तो नारायण चास तो लत्ती बो रखे ओ तो नहीं कहो तो कडुओ मदिसिनन कलाउ को दिलिए देला नहीं कहते ओ तो परकिरन सुधा दिबाई ओ तो बरांके नहीं होला।